0: ओ मेरो फुलीवारी, अब के छ त टिक्का?
1: के टिक्का? को फुलीवारी? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त मेरो फुलीवारी।

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे